जोसोलपा थ नेपालसम्म चिन्चस पी खुद अनालागा एकादशी थो रेडियो नेपाल खा नेनादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। विपक्षी दल तेगो पङ्ग चिला हुने धुम्कानी प्रतिनिधि सभा या आर्थिक दण 2083-84 राजस्व व्यय दक्ष अनुमान बजेट दति सामान्य सल यहाँको दु बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नोचुते धुम्कानी वो नापाया सल सोजामा दहीको प्रस्ताव न्यवया दिगु ख बैठक सभामुख डोलप्रसाद अर्याला राजस्व व्यय दक्ष अनुमान दति सैद्धान्तिक सल जक्क जुइगु मन्त्रालय गत ज्याचो योजना विशेष विनियोजन विधेयक दति आपला सल यामा दहीगु सल यानी ती पेघौया यी फ्यागु जानकारी बिया दिल बैठक आर्थिक दन 2083-84 राजस्व व्यय दक्षिणा अनुमान दथिय सल संसत्ता पक्ष संसदे स देया अर्थतन्त्र मुख हाथिया तन्के गुयाना बजेट वोगु कना दिल सांसद पिंस विप्रेसन आयात बेरोजगारी थे जागो पक्ष या उत्पादन लचका व आर्थिक विकास पाखे यंके गुयाना बजेट हिका आज पोङ्किगु कनादिगु खसा सांसद तेसा वैगु आर्थिक दया बजेट अर्थतन्त्र आपला पुनः संरचना जक मजुसे शासकीय रूप या त भिङ्केगु नपुइ वनिगु व निजी लागा या मनोबल या त थका त महत्व जाइगु नपु कोछिगु धया दिल अथियाना प्रतिपक्षी दलया सांसद पिसा बजेट सकल मनुतेगु यी कथ हाठ्याट कगा मफुगु धया दिल सा विद्युत खपत खे छेलिगु मु अभिवृद्धि कर विद्युत खपत मो जुइगु व बजेट कागु आज पुङ्के त शङ्का बोलनीगु धासे सांसद ताथेया लकस या त सोया बजेट हे मफुगु धया दिल अध्ययन बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 न्यवया दिगु खसा बैठक विधेयक न्यवया दिसे अर्थमन्त्री वागले नेपाल अर्थतन्त्र एसियन लागू विकास या ग्वाली थ्याङ्किङको आज मु व शोधान्तर स्थिरता कायम तया मुक्क वित्तीय लागाया स्थायित्व सेनाकेत कानुनी सुधार मागुली विधेयक हयागु ध्या दिल अध्ययन प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा सम्बोलङ्गु सकिपा विधेयक 2082 दफा वार सहलय नीति समिति छोगुदु सभाया मेगा बैठक सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा तया दिगु उगु विधेयक यता दफा वार सहलय नीति स्वपुदुगु समिति सन्छुमा दिगु प्रस्ताव यता सर्वसम्मति स्वीकृति आगु ख थ्यान्य सभासँग कार्यसूची दथिया प्रक्रिया हेजना चोमले संस्कृति श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय प्रतिनिधि सभाया बेल घेराउ याना नाराबाजी याना दिगु ख सभामुख डोलप्रसाद अर्याला नोयाको यी मोबिगु दासेल श्रम संस्कृति पार्टी सांसद पिस नाराबाजी याना बेल घेराउ याना यागु ख वयाल्यु श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्क राज सदन याता विदेश सञ्चालन या त इनाप्यासे संविधान कथन संसद शासन व्यवस्था सञ्चालन या सजग देश सुशासन लिनेगु धेया दिलस प्रतिनिधि सभाया मेगु बैठक थौन हिने चिन्छता थौ सुते चिन्छता इले चोनिगु गोसादु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारत सीमा या विशेष व्यादिगु नोचु या विशेष प्रतिनिधि सभा स्पष्टीकरण विषय प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति 10 गजा अतिक्रमण क्रस बोर्डर अकुपेसन नापा स्वपुदुगु धयादिगुदु सभाया मेघा बैठक सभामुख नापा यी कया परराष्ट्र मन्त्री खनाल सीमा हात्या नङ्केगु नीति नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप व मेगु संयन्त्र म्यापिङ या जयाना सङ्घना दिल परराष्ट्र मन्त्री खनाल लिपु लेक लिम्पिया धुरा व कालापानी नापाया लागा तेके नेपाया लाओ लुसी थे जागु भूमि व थो विशेष सरकारी आधिकारिक धारणा थथुक अगु ध्या दिल सीमा नापाया हाट्याता कूटनीतिक माध्यम व ऐतिहासिक तथ्य व नक्सली दंसा नङ्केता सरकार प्रतिबद्ध जुयागु थुकिया नीति भारत नापा मड्डीको खनाबला जुया चङ्गु खना दिल प्रधानमन्त्री शाह सन् 1816 सुगौली सन्धिया विशेष बेलायतया भूमिका विशेष व्यादिगु नोचुया बारे मन्त्री खनाल नेपाया छुन शोकको पक्ष मध्यस्थता माले मुआगु तत्कालीन इले अझ उपसन्दर्भ सामग्री अनि जक तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ता तेगु ना निथने मागु धत्विका दिलसा सीमा विवाद नेपाल भारत निगुदे दथ्य विशेष जुगु अथुकियाता थथ्वे समझदारी सङ्कोचाके मागुली सरकार निजनागु धासे परराष्ट्र मन्त्री खनाल हाठ्या नङ्केगु कूटनीतिक संवाद वार्ता माध्यम स जुगु धया दिल परराष्ट्र मन्त्री खनाल 10 गजा लागा अतिक्रमण व सीमा स्तम्भ तेगु व्यवस्थापन नीति
प्राविधिक पुचत सक्रिय जुगु जोइन्ट फिल्ड सर्वे टिमथिथि थासे ज्याना सङ्गु ध्यादिल। प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाह भारतीय फुकन शिवे तहा कगु प्रधानमन्त्री पद चना दिमा वेकया समकक्ष नरेन्द्र मोदी या त लसहना देशना दिगुदु। प्रधानमन्त्री शाह मिगस निल सामाजिक सञ्जाल एक्स पाखे प्रधानमन्त्री मोदी ऐतिहासिक उपलब्धि या त कया बिन्तुना देशना दिसे सुस्वास्थ्य नापा मड्डीको प्रगति या कामना नापा भारतीय जनता या समृद्धि या लसहना देशना दिगु ख अतिना। प्रधानमन्त्री शाह निगुते दति दया वया चङ्गु स्वापु आफला हना कथन लेना सोङ्गु ओथुकी अझ सेलनाके त थप्न ये कागु थासे सामाजिक सञ्जाल एक से थो ख नेतना दिगु ख। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले संसदीय बजेट उत विह सूचना जोगु धक्का अनियमितता जोगु धैकु हुइना बुइना खे छुन सत्यता मधु धया दिगुदु। प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति अमेगया बैठके आर्थिक 2083-84 राजस्व व्यय अनुमान बजेट या मुख्य मुख्य व्यवस्था या विशेषण लिसबी दिसे वेक्ला प्रस्तावित कर या दर विशेषण सूचना जोगु जेठ 14 गते बिवाईडी गाडी दुकाकु धैगु थयाता बिउगु दोपा महामुदुगु खजुगु धया दिल। मन्त्री डाक्टर वागले थ विरुद्ध संगठित कथ महामुदुगु खाना चोङ्गु वा बजेट वक्तव्य समावेश जुगु छगु थल आर्थिक विधेयक छुटे जुगुले संशोधन या नागु ध्वाथिका दिल। प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री या त कचौ या त सुगु ज्याख महामदुगु कथम बोलङ्के त बिना प्रमाण सम महामदुगु हिना बिना या ना चोङ्गु तया दिल। सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियन खारेजियाको निर्णय विरुद्ध लागू रिट निवेदन तथ्य सुनवाई सी मध्ये धुङ्कानी सो सोली थोए जेठ 29 गते सुनवाई जुइगु जुगुदु। प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा न्यायाधीशमै डाक्टर नहकुल सुवेदी विनोद शर्मा अब्दुल अजिज मुसलमान व महेश शर्मा पौडेलिया वैधानिक इजालसे सुनवाई न्या धुङ्कु साना यी मगा धुङ्कानी सो सोली थोहे जेठ 29 गते सुनवाई जुइ त सङ्गु ख थोया नि जेठ 20 गते सुनाई यायगु या नाम हिगया नीति सो सोनी तगुदु। सरकार डेंगु या संक्रमण या त वैगु याद दुने खुइगु प्रतिशतम हो यागु ज्याना चङ्गुदु। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय दिएकोगु डेंगु रोकथाम तथा नियन्त्रण बहुक्षेत्रीय योजना वैगु याद दुने संघीय प्रदेश व स्थानीय सरकार या फुका निकायसँग डेंगु नियन्त्रण रोकथाम बोटी या काकेता आज क्यागु कथन हेजनासँग नेथना त अगुदु। डेङ्गुसँग सी पनि गुलिया शून्य फुटी छगु प्रतिशत म यागु आज सरकार या दु विश्वव्यापी तापक्रम उपयोग छु दन तक तराईले जक्क खने दुगु डेङ्गु वङ्गु दे नेन हेगु जिल्लासँग खने दुगु ख थुगु सिना आतक खुइ च्यागु जिल्ला गुस झिङ्या मासिके डेङ्गु खनेन्दु थुगुसी क्षमा मनु सी नापा धुङ्क गुदु। किर्जन्य लुए शाखा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर गोकर्णनाथ हाल्या कथ वङ्गु स्वद थुके मनसु नापा डेङ्गु संक्रमित लिया उपया गुलुखे जिल्ला प्रकोप कथ खने दया चुङ्गुदु। सम्पत्ति छानबिन आयोग सम्पत्ति धल लल ह्यागु म्याथ असार मसान्त तक्क तङ्गुदु। सम्पत्ति धल लल ह्यागु लागा दुने लागु पदाधिकारी थपिन्सन सम्पत्ति नापाया धल संक्रमण काल या झोले दुगु यी मगागु ध्याथुङ्कानी लिपाङ्गु खुसी धल मुङ्किएगु नीति लक्षिया म्या तनागु आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारी जानकारी ब्यादिगु ख। स्वदेश व विदेशी चुनाव सम्पी मनुतेसँग थपिङ्के धल सङ्कलन या नीति यी मगागु धका म्याद बी धुङ्कानी हान लक्षिया म्या तङ्गु ख। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री नापा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति संयोजक प्रदीप पौडेल क्रियाशील सदस्यता इलेहे अध्यावटी किता नेता व कार्यकर्ता त्यता इनाफेना दिगुदु। महामन्त्री पौडेल विज्ञप्ति पिथना पार्टी क्रियाशील सदस्यता अध्यावटी कियागु म्याद थौ चाने झिनेता इले कोचायता सङ्गु धासे छुटे जुपिन्ता अध्यावेदिक यायता इनाफेना दिगु ख। महामन्त्री पौडेल क्रियाशील सदस्यता अध्यावेदिक यायता योग्य मुकन नेगु लाग्चे निदो निसौ गुमा सदस्य मध्ये पेङ्गु लाग ने नेदो सोसौ खुइ खुमा सिन अध्यावटिक या ढुङ्कगु धया दिलस अथ्याना छगु लाग पी
छगु लाख्नी पेदो नेस पी च्यामा दुज अध्यापटिक फारम दुत बिगु प्रक्रिया के दुगु वेक्ल खन्या दिल मिग जुई माथा थौ जुवङ्गु दु मजिको वोगु वालयाना चल वोङ्गुली डिनाचोङको कर्णाली करिडोर थौ सुथे निसी छखेर चागुदु मङ्गलबार व बुधबार मजिको वोगु वाया हुने कर्णाली

दो अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसी मोडर्न थो अध्ययन नापाया हिन्दूको हिमालय एचकेएच मनसुन आउटलुक 2026 बिहिबार पिथङ्गुख एचकेएस मनसुन आउटलुक 2026 विश्व व क्षेत्रीय स्तरीय तिथि जलवायु मोडेल तेको पूर्वानुमानसँग लिदंसाकाइ थुकिया आज जुन निसे सेप्टेम्बर तक या मनसुन मौसम सरकार विपद व्यवस्थापन निकाय व समुदाय यातायात योजना व पूर्व तयारी के ग्वाली ठेनेमा थैगु इसी मोड आज कागुदु छ थो अध्ययन भुटान भारत नेपाल पाकिस्तान नापाया देशे औस सिबे म वा वैगु व थुकी थो लागा यको थासे औस सिबे यको तापक्रम क्वाइगु प्रक्षेपण नापा यागुदु विज्ञतेस आँखा झाका खुसी वा चल व मेगु जोखिम तेगु सम्भावना आपलन दुगुन थागुदु आदेश पिने बुख अमेरिकी सेना या सेन्ट्रल कमान्ड सेन्टर सेन्टकम इरान या थिथि थासे लक्षित यासे हवाई आक्रमण या नासङ्गुदु सेन्टकम उगु कारबाही या त आत्मरक्षा नीति या नागुदासे इरान या मध्यका आक्रमण गतिविधि ते गुलिस बिगु धागुदु इरानी सञ्चार माध्यम या कथम बन्दर अब्बास बन्दरगाह केसमा टापु व दक्षिणी सिरीको मिनाप लाग्या विस्फोट या सत तया त्या दुगुदु तेह्रान या पश्चिमी लाग्या नापा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय या न त अगुदु छ थो यद्यति इरान या मेहर समाचार संस्था इरानी सेना हर्मुज जलमार्ग जुसे जुइगु फुकन जहाज तेगु वै वनिगु पूर्ण कथ नपुटिना बिगुदु थुके चिकङकु बिगु ट्याङ्कर व व्यावसायिक जहाज नापा डुठ्यागुदु छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा थोयान इरान सम्झौता या नीति यको लिपालाकगु दुप विषय मेगु सैन्य कारवाही यागु ख्याचो बिगु खस थुके इजरायल लेब्लान दक्षिणी लागा व बेका उपत्यका आक्रमण यहाँका तगुदु लिपाङको आक्रमण उप मनु त सिनासँग धागुदु वङ्गु मासुके इसरायली बमबारी खेलाना लेब्लाने जक सिपिने गुलिया सोदो खुस गुई खुमा ठेने ढुङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम त्यसन धागुदु आकाशय जानकारी हलियनियङ्क फुकसो लोकङ फागु कासा फुटबल यहाँ ट्याङ्गुदु ठुगुसी विश्वकप अमेरिका मेक्सिको क्यानाडा संयुक्त कथ गोसा गुए ट्याङ्गु दुसाथो ध्यान्जे बला पी च्यागु टिम बोटी काइगु थागुदु आ मौसम या जानकारी थौ डेनियङ्क खिउसे चोनीको जुगु दुसा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश हिमाली पहाडी लागा छुन थासे व मधेस प्रदेश नापा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश व तराई या लागा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली पहाडी लागा मो थासे व लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई या छगुनीगु थासे मला नापा लाप्सा तोया भटिचा वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि पेगौले यस सोनिगयाको आज नि नेगु फुटिङयागु डिग्री सेल्सियस तति चोङ्गु खस थौनिने यहाँ सोनिगयाको आज नि यागु निसे नि नेगु डिग्री सेल्सियस तति चोनिगु दुकुमादु थौ सुते यहाँ सोनिगले सुते सेङ्याता इजु निगु मिनेटे लुगु निभा शनि ल नेता इजु खुता मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन जिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ

लसे शेर्वी ताम छोतङ रिक्सुङ तिवा यर्गे तुङ्गुप्ला तङ सुङ्ख्योप कि तुप्ला रेडियो नेपाल ने तोङ्गिन वाउ शेर्वी के कि ल्यारिम शेर्वी डोलु के ल्यारिम सेन्दुला जुन वतु शेर्वा आचुनुप इजिनुम तङ छङ्गा छली तेरिला गमचोङला गा ल्यारिम जिन्क्योङमा ग्रिसमास शेर्पा छोक्ने टस तेले नरिकी जफुरी छेर्मु दोकेराङ आरिङसँग शेर्वी डोलुकी ल्यारिम तुङ्गुप्ला गा ल्यारिम जिन्क्योङ मातङ लक्सेपा दल्जा द्या स्टुडियोला लेम्गया दि ल्यारिम लेङ्गे तिवी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालकी एफएम ब्यान्ड तिवा 98.1 से 103 मेगा हर्समा सेनाङ थुप्की सिसी रेडियो नेपालकी फेसबुक पेज रेडियो नेपालकी वेबसाइट www.radionepal.gov.np तेचेन्न रेडियो नेपालकी अनलाइन पोर्टल www.radionepalonline.com तङ दि ल्यारिमकी फेसबुक पेज शेर्वी के शेर्वा तिवी घोषी सिरु पेज तेमासङ जम्मुलिङकी चुकुई दासल जुन गोसिनाङ सेनाङ तुप्के दिल्यारिमला शेर्वी चिछोक नङला जुने छक्लन फेन्सेन पो नङ्गुपकु छप्तिवा शेर्वी चिछोक नङ्गे सेब्जु बुलुप तिवा शेर्वी चिछोक नङ्गे छप्सित गोठितिवा शेर्वी स्वर्गेत पातिवा तङ सखुल्दा छोक्ला छक्लन फेन्सेन पो नङ्गिन जुन गोतु शेर्वा आचुनुप इजुनुम तिवाला फेप्सुने आरबुरा किरुप तङ कोर्ना छुकी कोला लेन खाक्सेन पोतिवा ख्याफेल के सिसी आरिङकी दिल्यारिमला शेर्वी लु सम्बातङ निङबा तिवा तङ शेर्वी चिछोक कोला ख्यान्थोक तेरुप चरिक्यान गए लसी त गमचोक्ला लेङ्गे तिवाला यम्बु ग्यालखप नङला शेर्खुम्बु सिरुप जुङखाजी वाइ सिरुप लु चिक्जकु टरिक्यान वाइ लसी सेन

तु यम्बा लुङबाला ड्रप ने तङ फरुप तपकी रङ्गी गोमाने जुन लै वाउ रङ्गी के तङ रिक्सुङ तिवा रिक्सुङ तिवी कोला रेवा तोरी गलोफ थङ्गेन माङसुक छिकल कि मे के माङबु थोकु तपकी सङ्ग वरङ सिर्वी के लोपु तङ थोकु ने तङ युङ्म जय गलोफ थङ्गेन तन्दी ने छुला सिर्वी केरङ मेता ड्रप चिङै तुछो वसिनाङ कोमाने जुन शेरवा दिवा देतोप युलगी मितिवी तरुङसँग शेर्वी के शेर्वी लक्ष्यल तङ रिक्सुङ तिवा सुङ्क्यो खि वयासङ सिथोप कि तोङला शेरवा तिवी लोसार डुम्जी डुक्पा छेजी मनिरिम रुचिङै तुछेन चाहिँ वाउ हिन्सिनाङ तन्दी तुछोला दसैँ तिहार क्रिसमस चिङै तुछेन ना छोक छोक्ला सेम युरु नेताङसँग फरि गलोफ थोङ्गिन चिछोक नङला लाला शेरवा तिवी याङ रङ्गी च्याप तुछेन कोलासङ ख्यान्थोक मेतुप तपकी दक्पी लुक्सु शेर्वी ङोसी तोरी डप नेताङ थोङ्गिन तुङनङ क्याने छोरिक गिरुवा शेर्वी चिछोकी लुक्सु नाङपा सङ्केपी शिला वतुप तपकी शेरवा तिवी सेम जाङबु हुङ्गु सिदे ताङ ल्याला यिछेकी शेरवा तिवी तन्दा तिङसुकी तुछोला याम्बा दासला मितिवा क्याने डप तपकी सङ छोरिक लक्लेन्ताङ लुक्सोला गिरुवा थोङ्गेन लुङबा गिर्पु तङ छुगेला छोरिक लुक्सोतिवा लक्लेने किमा थोपु तपकी यम्बुला वतोप लाखाङ नङला जुन्दा तिवी छोकसुक माङ न्युङ्म ड्रप तङ छिगेला वतोप शेरवा तिवीति दिदा सकी खोरियुक शिलारङ छोरिक लुक्सो गिरुवा तङनी लक्लेने कितोप ने तङ थोङ्गेन दक्पु नङला सङ्गेपी छोच्याप मि हिन्सिनङ लला शेरवा तिवी जेन्दी छक छोपा तङ मिनास डप जुग्ला खिरु लाकाला डोसुङ लाक्पा तङ्गु मिला छेदेन्दोप तन्दोक्ला खाङथेप्चे डोसुङ तङ्गुप ने ताङ तिवासङ दन्दै तन्दा शेरवी चिछोक नङला फरि गलोप थोङ्गिन तुकै ने ताङ फरि गलोप तपकी शेरवी चिछोक नङ्गी मेतिवी रङ्गे रिक्सुन किन्जोगी डप ताङ वराङ नाङपा साङ्गेपी ङोसि तोरी गलोप चिङै ने ताङ चिछोक नङला तन्दा थोङ्गिन तितपकी दक्पिकी डोसुङु मङ्बु ताङनि रिक्सुङ सुङ्क्योप किथोपकी सिरुप नासम तिवा क्युनचाङनि डोसुङ युङमो ताङनि रङ हिन्सिनाङ रङ्गि रिक्सुङ तिवा रङ्गि छो तिवा चेथोपकी सिने दक्पि पेजा तिवाला लोपको कि ताङ नोकिन तन्दि तुसोला ति तुङनङ क्याडे तन्दि तुसोला शेरवा तिवी मिबाङ थो युङमो ड्रप नितिवा दासा क्याने ड्रप तङ युला शेरवी टोङबा तिवी थो युङमो गल्सिमा चिछोक नङला कलि नासोक फरि गल्गाय मिथो न्युङमगलनि ससिङ लाका छुङमा सब लाका तिवा क्युन्जोकी डप लोपटला लोपजुङ कितुप लोपटुक तिवी थो न्युङम जय वतोप ठोतेन छोकपला लाका कितुप मिमे यौ तपकी ति सखुल जिन्क्युङ कितुपला कले छुङ्गाय तुग्रङ केने चिसोकला मितिवी चिक्डिला डिग्ने खिरु लाका तिवा सङ तन्दी नेतङ तन्दी तुसुला तोरी डप नेतङ फरि गलोफ थोङ्गेन तुग्रङ केने लाकी काले गोमाने जुन शेरवी खि वाउ लाका तिवा तन्दा न्युङमो ड्रप शेरवी चिसोक नङ्गी काले चोयिन मितिवा यम्बा दासा पोतुप तङ छिगेल्ने ड्रप थो फरुप तपकी वरङ्की खि वाउ लाका गोमाने वरङ फमा तिवी गग पोगै खि वाउ लाका तिवा तन्दा क्युन्चोकी वाउ थोङ्गेन तुछो नङसिन लाकी कोक पङ्बु वतुप तङ राङ्ला फेन्चेन पो हुङथोपु लाका खिरुप न्यौतपकी सङ युला जोमसप ताङ सिङखकी लाका तिवा युङम गलप थोङ्गेन तोङला खाङ्री सखुला कनीसङ याक नाक जोमताङ छुङमी गोठे तिवा वसिनाङ तासम्म तुकै लाका खिरुप मिथो युङम दै नक तुग्रङ क्याने टोछम्म सखुला सङ सुङक्योप टडिक मेतुप तपकी माङसोक शेरवा तिवा टोछम्म लाका क्युन्जङ्ने छिगेल्ला डप थोङ्गेन तन्दा दक्वी शेरवी चिछोक नङला वतोप दुकै ने ताङ कलेतिवा मेता जब्ला खाङ खाङ किथोप कि सिरुप थाप्तिवा दुकै वा रिक्सुङ सुङक्योप शेरवी के तङ रिक्सुङ सुङक्योप कितुप्ला गमसोक्ला खाङबा खाङबाला रङ्गी के लोपु दलजा छङ्गा छालेतिवा ताङ क्यान थुक्थेत कितुप रिम्बाला शेरवी के रङ थोकु के तङ रिक्सुङ कोर्की जिन्टा तिवा जिन्क्योङ कितुप तेजेन लोसार डुम्जी डुक्पा छेजी मनिरिम्रु चिङै तुछेने तिवा जुकथम्बा सेक सुङक्योप किगो कि शेरवी के लु सेब्रु सिली मन्जा समा तङ कोर्ना छोकी सुङक्योप क्यानी रङ्युलताङ छिगेला ल्यारेम तिवा कोडी क्याने वराङ रिक्सुङ सुङक्योप किथोपकी तुग्रङ क्याने छोरी कलक्लेन थाखाङला गिमी टेङमा छकछोपा क्याने पेजा तिवाला नङपा सङ्गेपी छो लोपको रिम्पुचे लामा खेनपो तिवी तेमा छोकी तेपा
मलम सु ल्यारिम चिन्चोङ क्याने सिर्वी चिचोक नङ्गी मेतिवी छोरी कोला हिचे खितोफु खोरियुक जोनी वराङ रिक्सुङ वराङकी सुङ्ग्योप किथोपकी तुग्रङ केने रिक्सुङ तुछेन्ती वा च्याप्रिम्बाला डोसुङ युङमो तोङ्गो ताङ जुन्दा तिवाला छोकी कोला ख्याथोक पिने रिक्सुङ सुङ्ग्योप किगो खक्सेन बनो युलकी सुङ्ग्योप युला देतुप चिछोक सेर्वी चिछोकी मितिवला साने देसन लरङ लाकी कोकप तेरुप लोपजुङ दाङ चिछोक यर्ग्याकी कोकप जप सेर्वी युल सुङ्ग्योप कितोब्ला सुङ्ग्योप छोकपा जोनी लखाङ छोर्तेन मणि दाङ टोङबा निङबा तिवा याङलोङ जोनी ससिङ लाका ताङ छुङबा सप लाकी कोकप जोगो तेजेन सेर्वी पे पार निङबा तिवा डिजिटल शिला सुङ्ग्योप क्याने रिक्सुङ टोछाम्ताङ युला चोन्दा तिवला छोकसुक क्याने तिपर्की तम्

वा तङ क्यान रिक्सुङ पल्जो रोक्राम छोक्ने चिक्डिल क्यानी चिकेल्ला तेतुप तेसेन युल्की शेरवाती पला तुछो तुछोला अनलाइन छोक दुती वा कोडी कि क्यानी युला यर्ग्या जप्ताङ युल्की छो रिक्सुङ तिवी चालक तिवा जप छर्सिला पिर्मी कोस्ताङ छोक्पा जोनी रिक्सुङ कोर्की लारिम तेजेन तुछेनला निकर छोक्ने छोकछोक क्यानी डिजिटल पेज तेमा लेन ख्याफेल कि तम्जिताङ चिक्डिल रम्बो जोगो कि दि तम्जिताङ चिक्डिल ती युला तेतो शेरवा तिवा तङ छिकेल्ला तेतो शेरवा तिवी पर्की तम्जी याङना युला तेराङ मेन्दे तदा ग्यालसा नाव द्याप कि अब दासा ना छोक्ला द्याप शेरवा तिवा तङ ग्यालखाप नङला याङना ग्यालखाप नङला द्याप शेरवा तिवा तङ छिकेल्ला तेतो शेरवा तिवी पर्की तम्जे ती रम्बो जोसिनाङ दक्पी रिक्सुङ तिवा दक्पी चिचोक नङला वतोप्ले तङ कले तिवा टिकपेराङ यिनसिनाङ दक्पी कि मेथा जो थपके तुग्राङ क्याडे नम्सी गिरुवा तेमा सुङ्केप कितोप थाप तिवा लक्लेने कि गो कि शेरवी चिचोक कि नाथुङला नेतोप म्यान सुङ्केप कि गो खोरियुक्ला चेङ्गा जप लाकला गोमा कि गो रिक्सुङ कले कि कोला लेन ख्याफेले क्यानी चिचोक नङला खोरियुक सुङ्केप छोक्पा जोने लाकी छर्सी लक्लेने कि गो के तितप कि दाकु शेरवा तिवा तेरे डिक्ने पिर्मी चिक्डिल्ला चिचोक नङला गोतोप नेताङ मेलकपा तिवा लुक्सो मेलकपा तिवा मेता जोने तेरि डिक्ने रङ शिवी के छो रिक्सुङ तिवा लुक्सो तिवा सुङ्क्योप क्याने यर्ग्या जब्ला ती तेरि डिक्सिङ तिरङ ल्यामो गीताङ नोके न लसी त याङनोङ द्या शेर्वी टेकी खाचेन्ला सिरुप लुचिक जग्यु टरी क्यान वे सेन्डोनाङ।

ईश्वर भी डोलू की लरिम की तंदा तिंग शुक्ला लेपु तब की द अरिंग की दि लरिम ला पे उतु सोसंग ता सिंधु छाल न ती तब की दि लरिम सिंधु ला चुन गोतु शेरवा आचुनुप इजिनुम तंग संगा चाली तिरिला थुचिचे सुई तहुंगुप निमला दि लरिम मंग लेवा सोपला खांकी गोकी सिरुप कोला लेंगे तिवि निरेला टोंगो दिवा नंगुनांग सिने संग शॉप किन निरेला टोंगो दिवा नंगुबला निरे ईमेल आईडी शेरपा प्रोग्राम इन्फो एट द रेट जीमेल डॉट कॉम तंग निरे की फेसबुक पेज शेरवी के शेरवा तिवि घोषी सिरुप पेज तेमा संग लेन दिवा तंगने टोंगो तोंगथोफ के से तिंग शुक्ला ना क्यों की युल सिरुप्लू चिक जोकिन तयंग नुंग यम्बा जफुरी छर्मु दि लारिमला छेतुनो सिंग आ लारिम जिनक्युंगमा क्रिसमस शेरपा संगोंगबा श्वाबियन तुचिसे टसिदेलेक

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग कोशी प्रदेशक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ आइ उपराष्ट्रपति कार्यालय लाइन चौरमे शिष्टाचार भेटवार्ता कयलनि अछि। भेटक क्रममे उपराष्ट्रपति यादव आ प्रदेश प्रमुख खापुङ बीच नेपालक संविधान द्वारा निर्दिष्ट कयल जिम्मेवारी, संहिता सुदृढीकरण, प्रदेश संघीय समन्वय तथा आपसी सहकार्यक विषयमे विचार विमर्श भेल उपराष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। उपराष्ट्रपति यादव प्रदेश प्रमुख खापुङके स्वागत करैत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्थाक सफल कार्यान्वयन के लेल प्रदेश आ संघ बीचक सहकार के और सुदृढ़ बनाओल जेबाक आवश्यकता बतौलनि। प्रदेश प्रमुख खापुङ संघीयता कार्यान्वयन में प्रदेश स्तर के प्रतिबद्धता व्यक्त करैत राष्ट्रीय एकता, समावेशिता आ संविधानक मर्म अनुसार प्रदेश सरकारक भूमिका संबंध में जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में अगला आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर छलफल भ रहल अछि। छलफल में भाग लेत सत्ता पक्षक सांसद लोकनि बजट आर्थिक पुनरुत्थान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय आ समावेशी विकास में रहकर एलाकार ने सकारात्मक रहल बतौलनि। सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सृजना, आयकर छूट सीमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा में लगानी वृद्धि तथा पूर्वाधार विकास में भारी रकम विनियोजन सँ स्पष्ट ढांचा तय कयल बतौलनि। दलीय आधार पर भेल छलफल में प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि बुद्धिजीवी आ मध्यम वर्गक विस्तारक नाम में आयल बजट नेपालक संविधानक प्रस्तावना सँ निर्दिष्ट कयल समाजवादक गंतव्य सँ फरक रहल बतौलनि। सांसद लोकनि एखुनका आवश्यकता अनुसार रोजगारी सृजना करबा सन बजट नहि आबि सकल, छोट किसान आ भूमिहीन कृषि श्रमिक प्रति बजट उदासीन रहल, बजट कृषि में श्रम आकर्षण, उत्पादक आ कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता में सहयोग पहुंचेबा सन नहीं आबि सकल बतौलनि। अर्थमंत्री वागले विनियोजन विधेयक 2083 आ राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2083 के प्रस्तुत करबाक लेल अनुमति मंगबाक आ प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल अछि। एहिना बैठक में अर्थमंत्री वागले नेपाल राष्ट्र बैंक तेसर संशोधन विधेयक 2083 उप विचार कयल जाके प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल अछि। गृहमंत्री सुदन गुरुंग विपद व्यवस्थापन में किछ कानून बाधक के रूप में देखल गेल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा, राजव्यवस्था तथा सुशासन समितिक आजुक बैठक में गृहमंत्री गुरुंग विपद व्यवस्थापन सँ आवश्यक उपकरण खरीद में ऐन बाधक भेल बतौलनि। कठिनाई में पड़ल नागरिकक उद्धारक लेल अखन विश्व बाजार में सुविधा सम्पन्न उपकरण के उपलब्धता भेलाक बावजूदो सार्वजनिक खरीद ऐन के कारण मानसून के समय में सामग्री प्रयोग नहि कयल जा सकबाक अवस्था देखल गेल ओ बतौलनि। स्वयं एक दशक से विपद के समय में नागरिकक सेवा में खटल आयल स्मरण करैत मंत्री गुरुंग सिंधुपाल चौक में आकाबरे प्लान चौक में पहिल बेर उच्च भार वहन क्षमताक ड्रोन मार्फत राहत वितरण कयल बतौलनि। ओ उपत्यकाक नदी किनार में जोखिमयुक्त अवस्था में रहल नागरिक के सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण कयल गेल बतौलनि। नदी किनार से होल्डिंग सेंटर में राखल गेल नागरिकक अवस्था बुझबाक लेल स्थलगत अनुगमन करबाक तैयारी में रहल गृहमंत्री गुरुंग जानकारी देलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले स्वयं ऊपर लागल कर हेरफेर संबंधी आरोप भ्रामक तथा अपमानजनक भेल बतौलनि अछि। सार्वजनिक लेखा समितिक आई सिंह दरबार में बैसल बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले अर्थ विधेयक में किछ सामान्य त्रुटि रहल आ सुधार करबाक क्रम में कर्मचारी से भेल प्राविधिक भूल के मंत्रालयक अभिभावक के रूप में स्वयं संसद में लिखित रूप में स्वीकार कर चुकल बतौलनि। एना विद्युतीय सवारी साधन के भंसार जाँच पाँच के संबंध में हाल में उठल प्रश्न सभा को उत्तर दैत अर्थमंत्री डॉक्टर वागले विद्युतीय सवारी साधन संबंधी कर के दर में कयल गेल परिवर्तन सड़क विकास शुल्क तथा सस्ता बनेबाक उद्देश्य सँ कयल गेल स्पष्ट कयलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले प्लास्टिक सँ बनल सूटकेस में 30% भंसार दर लागत गेल व्यवस्था कायम रहल आ वही वर्गीकरण में खोप तथा रक्तदान सामग्री बोकरवला करियर के हटाकर यही एक प्रक्रिया में मात्र काम भंसार लगवा सन विधेयक में समायोजन कयल जानकारी देलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले विधेयक के अन्य शब्द व व्यवस्था किछ परिवर्तन नहीं कयल गेल स्पष्ट करैत अर्थ विधेयक के 16 पाना वेबसाइट से हटाओ गेल नहि कहकर अपलोड प्रक्रिया में प्राविधिक तथा टाइपिंग त्रुटि मात्र भेल स्पष्ट कयलनि। सार्वजनिक लेखा समितिक बैठक
में सांसद लोकन विद्युतीय सवारी साधनक भंसार जांच पास संबंधी समस्या के नियंत्रण के लिए मंत्रालय अंतर्गत नहीं भक सार्वजनिक लेखा समिति से उप समिति गठन का छानबीन प्रक्रिया आगू बढ़ाल जवाक मांग रखलन। सांसद लोकन जनता के सशक्त बनाकर मात्र देश समृद्ध हेबा कारण करक भार घटाओल जवाक राजस्व प्रशासन कर प्रणाली तथा भंसार प्रक्रिया में प्रभावकारी नीतिगत आ प्राविधिक सुधार मार्फत सब प्रणाली सुदृढ़ बनाओल जवाक बात पर जोर दलन। मध्य प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आई सर्वसम्मति से पारित भेल अछि। प्रदेश सभा बैठक में मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल ज्येष्ठ 15 गते मध्य प्रदेशक प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाल कर्ण द्वारा प्रस्तुत कयल गेल नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल सम्पन्न भेलाक बाद निर्थिन्यार्थ मध्य प्रदेशक सभामुख राम आशीष यादव प्रस्तुत कला पर सर्वसम्मति से पारित कलक। नीति तथा कार्यक्रम ध्वनि मत से पारित करबाक लेल सभामुख यादव निर्णयार्थ प्रस्तुत करित काल ई पारित भेल। नीति तथा कार्यक्रम में प्रतिपक्षी दल सब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, लोक सेवा आयोग तथा जन लोकपाल आयोगक सदस्य नियुक्ति के विषय के अनुरोध अवरोध करित आयल छलथि। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर प्रदेश सभा में दर्ता भेल संशोधन प्रस्ताव मध्य सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले के राजकुमार लेखी के संशोधन प्रस्ताव अतिरिक्त अन्य 6 संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभा के बैठक से अस्वीकृत भेल अछि। अर्थमंत्री युवराज भट्टराय ऐसे पहिने नीति तथा कार्यक्रम में विभिन्न दलक प्रदेश सभा के सदस्यगण द्वारा राखल गेल जिज्ञासा के जवाब में एहि बेर 1 करोड़ टका से कम के कोनो योजना नहीं पड़बाक बतबैत प्रदेश सरकार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधार पर जोर देल गेल बतौलन। मिथिलाक प्राचीन शैक्षिक आ धार्मिक परंपरा संबंध में विशेषकर जानकी मंदिर दर्शनक लेल एनिहार श्रद्धालु भक्तजन सबके कूप सभक संबंध में ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व संबंधी जानकारी करबाक व्यवस्था कऽ सकला पर पर्यटन प्रवर्धन में सहयोग पहुँचबाक विश्वास लेल गेल अछि। साहित्यकार तथा इतिहासविद डॉक्टर राजेंद्र बिमल ज्ञानकूप, विद्याकूप आ सतानंद कूप मिथिलाक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय भेल बतौलन अछि। ओ स्थानीय किंवदंती, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक स्रोत के एकीकृत कर अनुसंधान कयल जेबाक आवश्यकता रहल ओ बतौलन। मिथिलाक समृद्ध परंपरा संबंध में जानकारी कराओल जा सकबाक ओ जोर दैत जनकपुर धाम स्थित श्री यागबल के संस्कृत माध्यमिक विद्यालय परिसर में रहल ज्ञानकूप, विद्याकूप आ सतानंद कूप मिथिलाक धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना तथा शैक्षिक परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतीकक रूप में रहल अछि। एहि के उत्पत्ति संबंध में विभिन्न धार्मिक विश्वास, जनश्रुति तथा पौराणिक कथन प्रचलित भेलाक बावजूदो ई कूप स्थानीय समाज में विशेष महत्व रखैत आयल अछि। ज्ञान, विद्या, आध्यात्मिक शांति से जोड़ल गेल ई 3 कूप केवल धार्मिक आस्था केंद्र मात्र नहीं भ मिथिलाक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संपदा के रूप में सेहो महत्वपूर्ण रहल बतौलन अछि। 12 में रासायनिक मल के कृत्रिम अभाव सृजना का कालाबाजारी करबाक उद्देश्य से नुकाकर राखल गेल लाखों टकाक मूल्य बराबर के अवैध मल प्रहरी बरामद कलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय 12 इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनी से खटल संयुक्त प्रहरी टोली काल्हि साँझ सुराखी के आधार पर प्रसौनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 प्रष्टोका में ऑपरेशन चलाकर ई अवैध मल नियंत्रण में लेलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय 12 प्रष्टोका के क्षेत्र के विभिन्न फसल दुकान, गोदाम आ सहकारी संस्था सबके आनल गेल भारतीय मल सहित आयात निर्यात में प्रयोग कयल गेल गाड़ी सेहो जफत कयल गेल जनौलक अछि। प्रहरी प्रष्टोका में संचालित नीतिक बीज भंडारक संचालक शिवशंकर शाह, स्थानीय राम अवध सहनी के घर में गोदाम राखल 47,342 मूल्य बराबर के 21 बोरा अनुदानित पोटाश मल सेहो बरामद कयलक अछि। अहिना वही स्थान निवासी रविन्द्र शाहक विक्की गल्ला भंडार से 96,317 बराबर के 59 बोरा अनुदान
दानित पोटास मल आ रमेश शाह संचालन कैल महासरस्वती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड से भन्सार छली के आनल गेल इंडियन यूरिया 28 बोरा अमोनियम सल्फेट 17 बोरा नेपाली अनुदानित यूरिया 18 बोरा मिला कुल 53 बोरा मल जफत कैल गेल जनौलक अनुसंधान क्रम में म प्र 03002611182 नंबर के ई लोडर गाड़ी में लोड का ल जात काल 16 बोरा इंडियन यूरिया 4,00,000 टका बराबर के ई लोडर गाड़ी समेत प्रहरी नियंत्रण में लेलक। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायत सहित यूरोपीय राष्ट्र सब ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देश ईरान ऊपर कड़ा दबाव सृजना करत अपन भूभाग में होबय वाला कहल गेल आक्रमण अपहरण आ डर त्रास के गतिविधि तत्काल रोकबाक लेल संयुक्त चेतावनी देलक। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आर्थिक वृद्धि और समानता के संतुलन को प्राथमिकता में रखकर आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाया गया है। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले का कथन। संविधान संशोधन बहस पत्र तैयारी कार्यदल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ चर्चा। सार्वजनिक खरीद अधिनियम के कारण मानसून से पहले आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में कठिनाई होने की जानकारी गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने संसदीय समिति को दी। और ईरान पर हमले को और अधिक कड़ा बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास के संतुलन को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सुशासन और जनप्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसे आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना विकास के लिए सकारात्मक बताया। वहीं विपक्षी सांसदों ने कहा कि बजट रोजगार, कृषि, छोटे किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षा अनुसार प्रभावी नहीं है तथा समाजवाद के लक्ष्य से भटका हुआ है। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल राष्ट्र बैंक तीसरा संशोधन विधेयक 2083 पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को अधिक गतिशील, सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। सांसदों ने डिजिटल भुगतान, साइबर जोखिम, राष्ट्र बैंक की नियामक भूमिका तथा वित्तीय नीति से जुड़े प्रावधानों को और स्पष्ट करने की मांग की। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान पर भी चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से संसद में आकर स्वयं स्पष्टीकरण देने और बयान सुधारने की मांग की। इसके अलावा ईवी गाड़ियों के आयात में कथित कर छूट और बिना सामान के कस्टम क्लियरेंस मामले की संसदीय जांच, मेची राजमार्ग विस्तार, जातीय भेदभाव, कर्णाली राजमार्ग की समस्या तथा सप्ताह में दो दिन की छुट्टी व्यवस्था पर भी सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने राष्ट्रीय सभा को अपने हालिया भारत दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा नेपाल भारत संबंधों को और मजबूत बनाने में सफल रही। यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, ऊर्जा साझेदारी, जल स्रोत प्रबंधन, सुरक्षा और जनस्तरीय संबंधों पर सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच अंतरदेशीय ऑनलाइन भुगतान और भूकंप के बाद परियोजनाओं के हस्तांतरण सहित 3 संयुक्त घोषणाएं भी की गई है। मंत्री ने बताया कि सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों के तकनीकी दल काम कर रहे हैं और इसे कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर के दौरान कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने बताया कि धान रोपाई का समय नजदीक आ जाने के मद्देनजर किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए सरकार आषाढ़ मासांत तक 6,00,000 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरित करेगी। मंत्री चौधरी ने बताया कि अब तक सरकार ने 4,68,016 मेट्रिक टन उर्वरक वितरण कर दिया है तथा 1,38,802 मैट्रिक टन उर्वरक मौजूदा स्टॉक में है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य छलफल हो, यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 29 गते शुक्रवार दोपहर 1:15 होगा। संविधान संशोधन बहस पत्र तैयारी कार्यदल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह के संयोजकत्व में गठित कार्यदल सुझाव संकलन के लिए ललितपुर के मान भवन स्थित प्रचंड के निवास पहुंचा था। उसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, नेपाल और खनाल की उपस्थिति में कार्यदल ने सामूहिक विचार विमर्श किया। गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के कुछ कानूनी बाधाएं मौजूद है। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज हुई बैठक में गृह मंत्री गुरुंग ने बताया कि संकट में फंसे नागरिकों के बचाव के लिए वर्तमान में विश्व बाजार में आधुनिक और सुविधा संपन्न उपकरण उपलब्ध है, लेकिन सार्वजनिक खरीद कानून के कारण मानसून के दौरान उन सामग्रियों के उपयोग समय पर नहीं हो पा रहा है। मंत्री गुरुंग ने कहा कि सिंधुपाल चौक और काबरे प्लान चौक में पहली बार उच्च भार वाहन क्षमता वाले ड्रोन के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह बैठक में निर्णय लिया गया कि निशा नियंत्रण के संबंधित मौजूदा व्यवस्था और प्रयासों पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और गृह मंत्रालय को आगामी 15 सावन तक प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा समिति ने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों और निकायों के कामकाज के अध्ययन और समन्वय को मजबूत करने तथा कार्य को गति देने के लिए 4 उप समितियां भी गठित की गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि उन पर लगाए गए कर हेरफेर संबंधी आरोप भ्रामक और अपमानजनक है। प्रतिनिधि सभा में सार्वजनिक लेखा समिति की आज हुई बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने बताया कि अर्थ विधेयक में कुछ सामान्य त्रुटियां थी और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों द्वारा हुई तकनीकी भूल को उन्होंने मंत्रालय के अभिभावक के रूप में संसद में लिखित रूप से स्वीकार किया है। इसी तरह विद्युत वाहन के भंसार जांच पास से संबंधित हाल ही में उठे सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कर दरों में किया गया परिवर्तन सड़क विकास शुल्क को कम करने और उन्हें सस्ता बनाने के उद्देश्य से किया गया था। बैठक में सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन भंसार जांच पास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय के बजाय सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से ही उप समिति बनाकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग भी रखी। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत महिला तथा सामाजिक मामलों की समिति ने सामाजिक परिचालिका प्रबंधन संबंधी तैयार प्रतिवेदन को प्राथमिकता के साथ पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है। समिति की आज हुई बैठक में सामाजिक परिचालिकाओं को प्राथमिकता देते हुए संबंधित सभी मंत्रालयों को उनके भावनाओं को संबोधित करने का निर्देश दिया गया। समिति की अध्यक्ष आकृति अवस्थी ने जानकारी दी कि अलपत्र पड़ी सामाजिक परिचालिकाओं को व्यवस्थित करने के लिए तैयार रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्देशात्मक निर्णय लिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई पोस्ट ट्रूथ पर कहा कि अमेरिका ईरान पर आज रात बहुत बड़ा हमला करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा ये बात कही। ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार, वायु रक्षा प्रणाली और उसकी अधिकांश आक्रामक क्षमता पहले से ही खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि निकट भविष्य में अमेरिका ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग और अन्य आयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण स्थापित करेगा, साथ ही ईरान के तेल और गैस बाजारों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेगा। खार्ग द्वीप ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप के टर्मिनल के माध्यम से होता है। ट्रंप इससे पहले भी कई बार खार्ग द्वीप को निशाना बनाने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की धमकी दे चुके हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य हमले हुए हैं, जबकि समानांतर रूप से किसी संभावित समझौते को लेकर बातचीत भी जारी बताई जा रही है। अगर ट्रंप की धमकी के अनुरूप नए हमले होते हैं तो इसका असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक वृद्धि और समानता के संतुलन को प्राथमिकता में रखकर आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाया गया है। वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले का कथन, संविधान संशोधन बहस पत्र तैयारी कार्यदल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ विचार विमर्श, सार्वजनिक खरीद अधिनियम के कारण मानसून से पहले आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में कठिनाई होने की जानकारी गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने संसदीय समिति को दी, और ईरान पर हमले को और अधिक कड़ा बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
8: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
9: नागरिक लगानी कोष।
10: झण्डु आयुर्वेद।
11: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
10: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
11: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
10: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
11: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
12: नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुरोध। यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईँले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईँका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौँ। अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना, नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय।
13: कृषक माझ बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
14: जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा धान खेती गर्ने कृषकहरूमा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरको अनुरोध।
13: नेपालमा सूचित वा पञ्जीकृत भएका धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन अनुरोध सहित
14: छोटो अवधिमा पाक्ने धानका जातहरू छनौट गर्नुहुन समेत आग्रह गर्दछौ।
13: सम्भव भएसम्म सुक्खा सहने जातहरू जस्तै सुक्खा श्रृङ्खलाका जातहरू तथा घैया एक दुई र तीन र सुक्खा तथा डुबान दुवै सहने बहुगुणी एक बहुगुणी दुई जातहरू प्रयोग गर्न हुन अनुरोध छ।
14: यसका साथै सुक्खाको प्रभाव कम गर्न धानको ब्याड राख्दा एकै पटक नराखी निश्चित दिनको अन्तरालमा राख्नु हुन, त्यस्तै बर्सातको पानी संकलन प्रविधि छरुवा धान प्रविधिको अवलम्बन गर्नु हुन समेत अनुरोध छ।
13: बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवन तथा राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सचिवालय ललितपुर,
14: फोन नम्बर 542-13-59।
15: पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सदाचार प्रवर्धनका लागि जवाबदेहिताका औजारहरू सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सूचना पार्टी, बोर्डको प्रयोग तथा पालना गरौँ।
16: सार्वजनिक निकायमा नागरिकले गरेका गुनासो समयमा नै समाधानको पहल गरौँ। गुनासो व्यवस्थापनलाई जवाबदेही बनाऊ। गुनासो भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा गुनासो अधिकारी कहाँ राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारमा सहयोग गरौँ।
15: नेपालमा सुशासनको पहल, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सह कार्य।
8: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
9: नागरिक लगानी कोष।

0: सोचने भर से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने भर से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो जरूरी है मंजिल पाने के लिए। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव,
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी।
1: जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 548, 684, 710, 1143 किलोहर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98 और 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psvnepal.gov.np पर एक साथ आप कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
0: साथ ही बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं, तो जो अब तक वंचित है नहीं देख पा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आप मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात तुरंत के तुरंत लाइव कमेंट के जरिए साझा भी कर पाएं। और किसी कारणवश अगर कार्यक्रम छूट भी गया किसी दिन तो बाद में भी इसे आप मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख पाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज है बारी आपके द्वारा भेजे गए प्यार भरे पत्र और फेसबुक कमेंट्स की।
0: जी, और हम पत्र भी लेंगे रमता जी सरकारी मेरी ओर, लेकिन आप सबसे एक बार आग्रह भी है कि इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज की माध्यम से, जहाँ से आप लाइव देख रहे हैं उस कार्यक्रम को आप शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और ये जो परिवार है मधुरिमा हिंदी का ये और भी बड़ा हो। ये पत्र है रेडियो नेपाल से, ये
1: आर एस
0: विजय कुमार जी का पत्र है। रेडियो नेपाल से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम मधुरिमा के प्रस्तुतकर्ता मुकेश जी, रमिता जी, सीमा जी तथा कार्यक्रम संचालक पुष्प रत्न जी को मेरा सादर नमन। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हम सबकी ओर से,
1: और अभी फिलहाल लाइव में देख भी रहे हैं आर एस विजय कुमार जी और कमेंट भी कर रहे हैं।
0: जी, इन्होंने लिखा है कि रेडियो नेपाल से जैसे कि आप सभी को ज्ञात हुआ कि विगत 31 मई 2026 को हिंदी सिनेमा जगत की एक और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से हिंदी सिनेमा जगत का एक और चमकता सितारा शून्य में विलुप्त हो गया। वाकई, लेकिन उनकी मधुर आवाज सदा फिजा में भ्रमण करती रहेगी, जैसा कि उन्होंने अपने ही एक गीत में कहा, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सभा बागे वफा में आए हैं। बहुत बढ़िया गाना है,
1: क्या बात है।
0: और इन्होंने लिखा है आगे कि उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं के स्वर में गाया यह खूबसूरत गीत रेडियो नेपाल के सभी श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें, न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। और इन्होंने डिटेल भी भेजा है, डिटेल हम बाद में कहेंगे ही। और इन्होंने हीरो हीरोइन तक का भी नाम लिया है, जितेंद्र ऋषि कपूर एवं रीना द्वारा अभिनय किया गया। आपके प्रिय श्रोता आर एस विजय कुमार, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत से। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पत्र के लिए। बड़े विनम्र पत्र लिखते हैं हमारे आर एस विजय कुमार जी। ये भाषा काफ़ी शालीनता दिखाती है इनकी भाषा, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म बदलते रिश्ते से, जो किसान 1978 में रिलीज हुई थी, सुमन कल्याणपुर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में। इसके गीतकार हैं अनजान और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: और ये पत्र है अनिल कुमार ताम्रकार जी का, शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश भारत से। और ये लिखते हैं, फरमाइश प्रोग्राम, जिसकी निगाहों में किसी का प्यार जब रस बस जाता है तो प्यार की खूबसूरती, प्यार की समीपता जिंदगी में अपना बनाने के लिए आतुर होती है। लेकिन किसी के प्यार को पाने के लिए, किसी के प्यार को जीतने के लिए प्यार करने वालों को भय रहता है कि किसी राह में किसी का प्यार दुख ना पहुंचाए, प्यार के सपने बिखर ना जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं कोई हमसे ना हो जाए। फिल्म का नाम है आराधना, शिवाजी चौक कटनी से।
0: वो शुरुआत में जब आपने पत्र पढ़ा तो मुझे लगा कोई सैड सा सॉन्ग वो फरमाइश करने वाले, लेकिन सीधे रूप तेरा मस्ताना पे आ गए। ओके,
1: और आगे इन्होंने अपने परिजन के नाम लिखे हैं, अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें। और इन्होंने रवि कुमार राहुल जी हैं, रवि जी, और इन्होंने मेल के जरिए अनिल जी को फॉरवर्ड करते हैं हमेशा, ये
0: कोलैब करके भेजते हैं,
1: कोलैब करके भेजते हैं मधुरिमा कार्यक्रम में। और ये कुछ ज़्यादा लिखते नहीं हैं, अपना नाम पता और परिजन के कुछ दोस्तों के नाम लिखते हैं। तो इन्होंने फिर से वही लिखा है, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा, भारत। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल।
0: चलिए, आप सब के लिए और हम सब के लिए, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है रमिता जी,
1: जी
0: सुनते हैं ये गीत।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म आराधना से, जो किसान 1969 में रिलीज हुई थी किशोर कुमार की आवाज में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार एसटी बर्मन।
1: और
0: जी, और ये श्याम सुंदर महेश्वरी जी ने कमेंट के जरिए कुछ भेजा है फारबिसगंज बिहार भारत से। ये लिखते हैं कि किसी से प्रतिशोध लेने का आनंद केवल दो दिन तक रहेगा, परंतु उसे क्षमा कर देने का आनंद जीवन भर रहेगा। क्या बहुत खूबसूरत वाक्य। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है।
1: क्या बात है। और इन्होंने कोई गाने की फरमाइश तो नहीं की थी, लेकिन मधुरिमा टीम की तरफ से हमने ये गाना गिफ्ट के तौर पर और
0: पेश है ये गीत।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में यह गाना आपने सुना फिल्म फर्स्ट लव लेटर से, जो कि सन 1991 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं अनजान और संगीतकार बप्पी लहिरी।
1: और ये कमेंट है भागवत चौबे लाडला जी का, भारत मध्य प्रदेश से। फेसबुक के जरिए इन्होंने कमेंट की थी और इन्होंने लिखा है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।
0: वाह।
1: घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है।
0: वही जिंदा, क्या बात है।
1: यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है।
0: वाकई
1: इन्होंने गाने की फरमाइश की है, कोयल सी तेरी बोली।
0: हाय हाय, क्या बात है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म बेटा से जो किसान 1992 में रिलीज हुई थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। और मोहम्मद अफरोज अंसारी जी हैं दिल्ली भारत से। और अफरोज अहमद जी ने कहा था, मुझे अफरोज से मुझे याद आया कि गाना गुनगुनाने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन मैं सोचता ही रह गया कि मैं कौन सा गुनगुनाऊं
1: जी,
0: तो लेकिन थोड़ी देर में गुनगुनाऊंगा, मैं अभी याद करता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने लिखा है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये गाना इनको सुनना है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

0: और ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म गुमनाम से, जो कि सन 1965 में रिलीज हुई थी, और इसमें महमूद की भी आवाज है। इसके गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: और ये हैं जावेद जी भारत बिहार दलोखर से, और ये लिख रहे हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इस प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। चाणक्य का है ये
0: अच्छा
1: लाइन। और इन्होंने कहा है कि तुझे चांद के बहाने देखूं गाना सुना दीजिए।
0: और ये बहुत बढ़िया गाना है, और मुझे गुनगुनाने के लिए कहा था आप रोज अहमद जी ने, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। रफी साहब का ही मैं आज गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ
1: जी।
0: उतना बढ़िया मैं गाता नहीं रफी साहब का गाना, लेकिन फिर भी तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म नया दौर से, जो किसान 1997 में रिलीज हुई थी, माफ करें 1957 में, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में। और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।
1: और अब हम कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं और ये आखिरी पत्र हैं। और फेसबुक कमेंट्स के जरिए नूरुल हुदा लस्कर जी, जो कि असम भारत के रहने वाले हैं, इन्होंने कुछ लिखा था। आप दोनों को मेरा नमस्कार, मुझे एक गाना सुनना है। गाने का मुखड़ा है तेरा तोता, मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना। और इस गाने की फरमाइश इन्होंने की है और साथ ही साथ डिटेल्स भी यहाँ पर लिखा है। और इन्होंने कहा कि हम इंडिया से बोल रहे हैं। गांव का नाम है उत्तर जशनाबाद और मेरा नाम है नूरुल हुदा लस्कर।
0: लस्कर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सुनेंगे पाप की दुनिया से ये गीत, जो कि सन 1988 में रिलीज हुई थी, किशोर कुमार की आवाज में और एस जानकी की आवाजों में। इसके गीतकार हैं अनजान और संगीतकार बप्पी लहरी। लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं, दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेरो शायरी, कविता, गजल, जोक्स जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634, ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। तो आज की श्रृंखला से प्रावधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव
0: आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल।
1: नमस्कार, शुभ रात्रि।